किशोर दा की आवाज, आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बाबरा के बोल। कुछ गाने जो है ना वो 5 मिनट में ही हमारे दिल की सारी बातें जाहिर कर देते हैं, और जब शब्द ना मिले तो बस गाने प्ले करके सुना देना चाहिए, वैसे भी समझने वाले समझ जाते हैं। खैर, सुबह के 5:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी के दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी। और जून जुलाई की गर्मी बस सह लीजिए, फिर तो अगस्त में सावन और त्योहार शुरू हो जाते हैं। इस गाने के बाद आपसे मिलता हूं, और बस ऐसे गानों का मसाला लेते रहिए, झूमते रहिए।

देवकी पंडित की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना था फ्रॉम द मूवी साज। और जून की गर्मी में आम तो देखिए अभी बाजार में तो बहुत आए हुए हैं और खा भी रहे हैं लोग, और पूरा बाजार जो है वो आमों से सजा हुआ है। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आमों की बड़ी प्रशंसा की थी, और यहाँ तक कि मिर्जा गालिब भी ना आम खाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम पर एक फारसी में प्रसिद्ध मसनवी यानी आम की तारीफ दर सिफत अबाह में लिखा है कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो बहुत मीठे हों और दूसरा बहुत सारे हों। तो गर्मी के फलों और शरबतों का आप लुत्फ लीजिए। बाकी अगले घंटे सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे अर्पण बबीता शर्मा के साथ, और इस गाने के साथ ही मुझे यानी पंकज को दीजिए बहुत सुहानी से अनुमति। दोबारा जल्दी मिलूंगा, सुनते रहिए 24 घंटे हर दिन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आम जैसे मीठे मीठे गानों का मजा लीजिए। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और ये आज हम आपको बता दें आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आज रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें बबीता शर्मा आपके साथ होंगे। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान बाल कांड भाग 80। सुबह 7:10 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। म्यूजिकल दिल लगी, इस कार्यक्रम को सुबह 8:45 पर बबीता शर्मा के साथ आप सुन पाएंगे। सुबह 9:10 पर इसी कार्यक्रम को म्यूजिकल दिल लगी को आप सुबह 9:10 पर नाज शेख के साथ सुन पाएंगे। सुबह 10:30 का समय रहेगा रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम का दिल का मेल बॉक्स, नाज शेख इसमें आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे तस्वीर कार्यक्रम, जिसमें आज आप लद्दाख पर आप जानकारी सुनेंगे। दोपहर 12:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे, जिसमें आज कई विषय होंगे। 90 सालों का हम सफर आकाशवाणी फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत होगी, साथ में लू से बचाव, रखें सेहत का ध्यान, योग का महत्व और अन्य विषयों पर आप जानकारी सुन पाएंगे गीत और संगीत के साथ। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे शबनम। दोपहर 1:10 पर शबनम के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज की अभिनेत्री हैं सारिका। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उन्नत किसान का, इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ होंगे राज सिंह अध्यक्ष सदस्य विज्ञान संभाग, विषय रहेगा स्मार्ट कृषि नवाचार खेती में डिजिटल क्रांति, इस कार्यक्रम की संचालक होंगी शबनम। दोपहर 3:10 पर रूमी मलिक आपके लिए लेकर आएंगे रिक्वेस्ट शो मन भावन। दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम AIR@19 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, इस कार्यक्रम में रूमी मलिक आपके साथ होंगी और अतिथि रहेंगे डॉक्टर ऋतु राजपूत, पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी। शाम 4:10 पर रूमी मलिक के साथ हम सुनेंगे फिल्मी सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिव कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
6: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
8: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
6: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत

0: जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए।

0: गई। ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं। विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore

एक ही कलाकार हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम टे दूसरा गीत उफ ये मोहब्बत फिल्म अटुनिले उन्हें ढगा सब बिल्लाग इटु गीत खाने म्यूजिक दिसे निखिल विनय और लिरिक रानी माले उन्हें ढगा सब बिल्लाग अपने कन आकाशवाणी एफएम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज पर एक ही कलाकार प्रोग्राम टे किसमान फिल्म पर कुमार सानू गोवा गीत खान शुनी आसे आमी हेला प्रोग्राम आगे लई जाय आसे आरो प्रोग्रामते बार दूसरा गीत दिया आसे धाल फिल्म की गीत म्यूजिक दिसे अनु मालिक आरो लिरिक अनु मालिक

0: whatever.
1: All right, dear listeners, Maroon 5 with their track One More Night. We just have 5 more minutes left on the clock for your Western music program. RJ's Choice, hope you guys had a good time. And don't go anywhere, because right after this, there'll be your program, Woman Time, followed by Hindi Film Songs SMS Request Program at 11:30. So, dear listeners, request messages kan starting from 11:30 a.m. ra. शुरू करना पताओ पड़ेगा 9436805333 डे सो मेनी मोर यू नो एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स कमिंग योर वे एंड यू गाइस कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय ट्यूनिंग इन टू एफएम ट्रगोपान एट 103 मेगाहर्ट्ज़ बट एज ऑफ नाउ

0: apni laga self introduction olop koi diwo.
1: Hello everyone. Mola naam tu Abhi ase. Moi area tu 37 run kori ase.
0: Acha.
1: Moi konoma bosti di Mikey farmer ase.
0: Acha.
1: Aro moi area carrot, garlic, potatoes, cabbage, aro rice itu kan palie. Holiwe moi la main farming tu kiwi farming kori ase.
0: Acha.
1: Aro idea moi ke time iniga pa tu bisi khushi ase.
0: Acha. Thank you, sister. Bishop Ase Guidishe, Aro Bishi Kushiase, Apniaji, Amihana, Mikey Money Program Day, Time Diakane.
1: Thank you.
0: To Mui Apnike Sopse Poila Hudio Monjado, Apni to Kiwi Farming Growle, Kibra Inspiration Dishe, Itulo Kuido.
1: Mui Kiwi Farming Inega Korea to first time to do a good inspiration Inega Tagane. Holiwe itu Kohima Horticulture Office de Kumba Officer Matina Bijan to Didishe Aro first time to do Paliawi nai Aro second time to do Palishina na iniga hudina hoi tatewara star kurina Palishe to first itu Bijan dia to 100 to 150 iniga Bijan to Didishe Aro tatewara moi kan 50 to manuke dina 100 hisap te sob tu palishe aro idea tu 2026 tu mola kiwi bijan tu increase hoina 500 plus plants increase hoshi
0: chaman inspiring ase ami hange itu share kuria kane thank you itu kiwi farming do ajikali nagaland vi popular hui ase to itu Kiwi laka farming journey to kitia bara apni shuru kurise aro kiman sal run kuris na
1: kiwi farming itu shuru kuria tu 2018 bara shuru kurise aro itia tu 8 years run hoina ase aro first after 3 years tu itu guti tu durebo enya kurise to first tu hoi duria tu durise olive flowers to ula time de itu kan tu pluck kurishe itu guti tu ne du wole karne so that itu kiwi tu after 3 years tu guti tu duribo inya kwa tu after 3 years tu kiwi flowers bi ulaishe aro fruits bi ulaishe aro inya ho pichi de ma kan itu fruits aro flowers itu kan tu sob pluck kurishe no hole do pad juldi guti tu durishe gole itu do short life hoi jae nya koina sob pluck kurishe after 1 year itu pichde itu do 4 year de first harvest do 500 to 600 kgs inya de inya do guti tu collect kurishe
0: acha ये जो इमाम बाजे मांगे बुझाए दिया करने थैंक यू और अपने तो कीवी फार्मिंग लगा प्रोसेस किन्हीं का लर्न कृष्णा इको ट्रेनिंग लुष्णा निजोर ही सीखी पाई चाहिए
1: मुझे फर्स्ट टाइम तो इको ट्रेनिंग भी था क्या नहीं इन्हें निजोर पर trials and errors we guri tagina kinega kuwo lagi kinya ne kuwo lagi itu do tate bara janina janiona kurishi aro 2019 para office horticulture office day kuma officers aro kuma office staff kan to inya kuwo lagi iniga kurubi koina training to dina tate bara aro kuma hoi learn kurina tate bara start kurishi ये मोय दो होले दो ट्रेनिंग एको ट्रेनिंग लावि नै कि वे फार्मिंग तो फर्स्ट ते दो ट्रायल एनी एरर बिसि थाकिसे तो फ्रेंड्स एक्जन एजन के एनकरेज गुरिना इनिया मेथड बरा गुरिबो लागे क्वेन क्वेना ताते बरा सुरु गुरिसे आरो 2019 बरा ऑफिस डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिस ते दो ट्रेनिंग दिना इनेगा हिस मेथड ते kuriwo lage koina tadebara aro tadewi learn kurina ida tak bisi successful hoina chase
0: acha thik ase aro apni tu iko dawai han julaina natural method pahi farm kurina
1: to itu kiwi farming kuria tu moi khan iko dawai hoi fertilizers itu kan tu iko natural ne sobi organically

हुने जगा सबैलाई प्रोग्राम टी बर्जस्रा गेट हुने भयो अरमन मलिक लगा वासी फेम हिरो आरो इटु गेट टु हुने बोले मन होइगेन पसन्द करिगेन अनुरोध करिसे बालीपथर ब्रा हन्द्रिका टिमुङपी आरो थार ब्रा डेडिकेट करि दिएसे इटु गेट टु जोगेन्द्र रङपी सोनाली इङटिपी सुनिता बसुमतारी अमोल बसुमतारी बिमोल बसुमतारी रमेश पात्रो शिकारी रङफर भाइकन मुन्दा बिमोल बोरा चुबाके जमीर रकोविले मेथा बिरेन हान्से आरो एफ एम ट्रेक लगा बहुत बहुत साथी बिलाग तो हुनिबो हिरो फिल्म की गीत गाएसे अरमन मलिक

उन्हें ठगा सब बिल्ला के तीसरा बार आकाशवाणी एफएम ट्रैक पर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको स्वागत करें से हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम जी हाँ आर्जेस चॉइस से अपना खन सब आपको वापस आएगी ना प्रोग्राम के साथ डीबी और वही तो प्रोग्राम के सबसे पहला डिस्को डांसर फिल्म बापी लहरी लगा आवाज से होने ले एक बार होने पर स्टार फिल्म की गीत गाए से नाजिया हसन

0: लोग जो मिरर वर्क है, शीशे का काम ज्यादा, शीशे की बिल्डिंगें बहुत ज्यादा बन रही हैं घरों में भी, बहुत ज्यादा बालकनी में भी इवन वो लगा देते हैं शीशे, तो उससे क्या ज्यादा गर्मी उत्सर्जित होती है?
1: आप जरा देखें कि गर्मी तो उतनी आ रही है जो सूरज की, तो अगर शीशा है तो वो वर्क, जो हाई वेवलेंथ का की लाइट है वो अंदर आ जाएगी और अंदर का तापक्रम बढ़ जाएगा, राइट? और दूसरा क्या असर होगा, आप उस तापक्रम को ठंडा करने के लिए फिर जो बड़ी मुश्किल से हम बिजली बनाते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो शीशे का तो बहुत कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। बल्कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि जो विंडो पैंस हैं वो चिड़ियों के लिए भी कितनी ख़तरनाक हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हाई स्पीड में आने वाली चिड़िया कई बार इससे डायरेक्ट टकरा जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो हमें अपने वाड़ी कॉल घोंसले को, इंसानी घोंसलों को अलग ढंग से संभालना होगा। ऊंची, जब बहुत ऊंची बिल्डिंग बनती है, गलियां पतली हो जाती हैं, तो हवा का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ये हीट आइलैंड इसलिए तो बनता है
0: जी।
1: आप जरा सोचें, तो हमें फिर से सोचना होगा कि हमारी जिंदगी जो पहले थी वो कुशादा थी, विकास हो, लेकिन कोई भी विकास जो हवा पानी से ऊपर हो जाए उसे हमें उस पर ठहर जाना चाहिए, थोड़ा विराम देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे सांसें चलती रहें, हमें पीने का पानी मिलता रहे और विकास भी उसी गति से चलता रहे। विकास की गति कहीं इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो इंसानी जिंदगी से ऊपर चली जाए, तो डेवलपमेंट के मैट्रिक्स से इन्वायरमेंट को कंप्लीट वाइपआउट नहीं होने देना है। और जैसा हमने सरकार के उदाहरण को बताया कि दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क्स प्रोग्राम चल रहा है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतनी अच्छी काम की शुरुआत की दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलके, वो अपने आप में एक उदाहरण है और उससे सीख के कई राज्यों में इसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लैंडस्केप और रिवरस्केप को रिस्टोर करने का एक कारगर वैज्ञानिक उपाय बताया गया है, जहाँ पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की मदद से डिग्रेडेड इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करते हैं जो आपको हवा पानी मुहैया कराते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, जून का महीना चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, ऐसे में अक्सर देखने में आता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जब हम गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर में हमेशा कुछ ना कुछ गिरावट रहती है, वहाँ का ठंडा टेम्परेचर रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, कैसे गाँव का जो खूबसूरत सा वातावरण है उसको शहरों में कैसे ला सकते हैं।
1: देखिए, अर्बन रूरल में सबसे बड़ा फर्क होता है सरफेस का। जो अर्बन सरफेस है वो हार्ड सरफेस है, कंक्रीट का सरफेस है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्सर हाँ होता है कि अर्बन एरिया में सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज हम महसूस करते हैं जो रूरल में नहीं है, क्योंकि सरफेस ऐसा है जो सारे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, एल्बिडो कम हो जाता है, मतलब सूरज की रोशनी को वापसी जाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वो इसके अंदर समाहित हो जाते हैं और ये पत्थर फिर से गर्मी और निकालते हैं। और यही मुश्किल है कि जितना भी हार्ड सरफेस होगा, ग्रे सरफेस होगा, तापक्रम बढ़ता जाएगा, और इसलिए अर्बन हीट आइलैंड एक इफेक्ट की तरह देखा जाता है। और शहरों के रिन्यूअल के लिए, अर्बन रिन्यूअल, अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए ज़रूरत है मोर एंड मोर ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका मतलब है हमारी नदियाँ, उसको ब्लू ग्रीन कहते हैं, हमारे वेटलैंड्स, उसको ज़िंदा रहना, और उसको ज़िंदा रहने के लिए विज्ञान का एक पहलू है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, उसके माध्यम से उसको सही हम कर सकते हैं। और दिल्ली में ही भारत सरकार के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह कर दिखाया है कि पानी, जो नाले का पानी निकलता है उसको भी हम कैसे साफ कर सकते हैं बिना बिजली के, इस फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से। तो ये सारे उदाहरण हैं जो सरकार कर रही है, और मुझे लगता है इसको द्रुत गति से चलाने की ज़रूरत है, तेज़ चलाने की ज़रूरत है, जिससे इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा कुशादा हो सके।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देती है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देती है। पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी पृथ्वी पर मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर की। आप भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070, हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर की। हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर फैयाज खुदसर, सीनियर साइंटिस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम। और अगर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के कई सारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं जो हमें हमारे आसपास नजर आती हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई और इसी के साथ साथ नदियों का भी दूषित होना बहुत बड़ा नुकसान लेकर आता है मानव जीवन के लिए। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। इसी के साथ हमारी दो फ़ोन लाइन्स हैं जो स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। आप फ़ोन करके भी अपने क्वेश्चंस एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके समाधान जान सकते हैं। फ़ोन नंबर 011-234-210-80, 011-234-210-84। और सीधा व्हाट्सएप मैसेजेस की तरफ चलते हैं। सर, भगवती सिंह का मैसेज आया है दिल्ली से। वो कहती हैं कि पृथ्वी पर जो समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, क्या उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है?
4: आप देखें, ओशन का रोल बहुत बड़ा है। हमारे जो क्रियाकलाप हैं इंसानों को, जिसके वजह से तापक्रम बहुत तेज़ी से समुद्र का बढ़ रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो मरीन इकोसिस्टम तो नुकसान पे आ ही रहा है, क्योंकि मरीन आप इकोसिस्टम को देखेंगे, उसके एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, मरीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आप सोच लें कि अगर टेम्परेचर बहुत रेज हो गया, वो पौधे ख़राब होने लगे, मरने लगे, तो कार्बन का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, फिर ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में वो मदद करेगा। इतना ही नहीं, ओशन का सबसे बड़ा रोल है वेदर पैटर्न को कंट्रोल करना। वो कैसे करते हैं? पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, वाटर वेपर बनता है, वो पार्टिकुलेट मैटर से जुड़ जाता है, उसका जब वजन बढ़ जाता है बारिश की तरह धरती पर गिर जाता है। पानी फाइनाइट है, जान लें आप, और इसीलिए जो भी फाइनाइट होता है प्रकृति ने उसको रिसाइकल करने की शक्ति दी है, और ओशन इसमें सबसे बड़ा मदद करता है, जो बादल का बनना और बारिश का होना। तो इसलिए अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरीन इकोसिस्टम तो जाएगा ही, हमारे जो वेदर पैटर्न है वो काफी प्रभावित होंगे।
3: जी बिल्कुल। एक कॉल आ रही है तो कॉल हम ले लेते हैं। आप हेडफोन जी। हेलो।
5: हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी प्लीज अमित बताएं, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
5: मेरा सवाल है कि जल को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें क्या योगदान देना चाहिए?
3: अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि जल को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं।
4: ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वही बेसिस है।

0: देखिए, जो हमें देखना होगा कि हमारे पास हम कितने पेड़ों को, कितनी प्रकृति को एकोमोडेट कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, विकास की गति में हमें लगा कि पाँव में कीचड़ नहीं लगना चाहिए, पाँव में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए,
1: जी
0: हार्ड सबस्ट्रेटा की तरफ हम चलने लगे। तो आप देखें, आपके पास जितने भी स्पेस हैं, अगर ट्री का स्पेस है तो ट्री लगाएं, श्रब का स्पेस है श्रब लगाएं, अगर कुछ स्पेस नहीं तो पॉट में हर्बेशियस लेयर लगाएं, लेकिन याद रखें वो स्थानीय प्रजाति के पौधे हों। नहीं तो विथ ऑल गुड इंटेंशन जितने भी प्लांटेशन किए जाते हैं, अगर वो नॉन नेटिव हैं तो उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। सो स्थानीय प्रजाति के पौधों को लगाएं और लाभ पाएं।
1: जी बिल्कुल। साथ ही उन्होंने पूछा था कि पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं।
0: सबसे बड़ी बात है पानी में, जरा सोचें कि हम धरती के अंदर के पानी को, जिसको एक्वीफर्स कहते हैं, उससे अपने सिर पे रखा, अपने छत पे रखा काला दानव, काला दानव कहते हैं टैंक को, उसमें ले जाते हैं, वो साफ पानी होता है, फिर उसको अपने बाथरूम से गंदा करके बाहर निकालते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए हमें कितना कम से कम पानी का उपयोग करना है। एक तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपके आसपास सरफेस रन ऑफ को जमा करने के लिए, बारिश के पानी को जमा करने के लिए अगर कोई ताल तलैया तालाब वेटलैंड है और सरफेस रन ऑफ बाधित हो रहा है, तो कैसे आप मदद करें कि वो सारा पानी वहाँ जमा हो, जिससे एक्वीफर रिचार्ज होगा और आपको निरंतर पानी देगा।
1: जी बिल्कुल। एक और कॉलर हैं जो हमसे जुड़ने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, और प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: हाँ जी प्लीज राकेश जी अपना क्वेश्चन पूछिए।
2: जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे शिमला में ज्यादा गर्मी होती है जो कि पहले नहीं होती, हम पहाड़ों को जो कटाई हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, हम पहाड़ को फिर से दुरुस्त करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, मेरा ये सवाल है।
1: जी बिल्कुल। आपका नाम, आपने क्या बताया?
2: राकेश, राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी जी बिल्कुल। राकेश जी का क्वेश्चन है शिमला से, वो कहते हैं कि पहाड़ों की कटाई की वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शिमला में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ों को किस तरीके से बचा सकते हैं।
0: ये सवाल बहुत गंभीर है। अगर आप गौर से देखें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने चीज़ों को इस प्रकार करना शुरू किया, हमारी डिमांड होती है चौड़ी सड़कें, हमारी डिमांड होती है अधिक से अधिक विकास, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबका कैरिंग कैपेसिटी है। हमारे हिमालयाज जो यंग पहाड़ हैं वो बढ़ते रहते हैं, हमने वहाँ पर अपने हिसाब से सड़कें बनाई, अपने हिसाब से कटाई करी, और जब कटाई करते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमें बहुत, और लैंडस्लाइड से सबसे ज़्यादा नुकसान ह्यूमन लाइफ को होता है, क्योंकि सारे पेड़ जो पहले कभी वहाँ जम के पकड़ के इसको रखते थे, उसमें बहुत कमी आ रही है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो भी सड़कें बनती हैं, क्या हम अनियमित ढंग से जेसीबी से पहाड़ को किसी एंगल, जिस तरह से सोचें कि हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो, क्योंकि हिमालयाज बढ़ता हुआ पहाड़ है, वो इसको झेल नहीं पाता है, वो फ्रजाइल इकोसिस्टम है, और इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं जो निरंतर बारिश के वक्त लैंडस्लाइड दिखने को मिलता है। इसमें एक्चुअली हमारे आवश्यकताओं को राकेश जी देखना होगा कि हम किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी ज़रूरत इतनी ही है,
1: जी
0: जितनी ज़रूरत बढ़ती है सरकार आगे उसमें विकास करती है, क्योंकि हमारा डिमांड होता है और वो विकास पहाड़ों के लिए घातक साबित होता है।
1: जी बिल्कुल। चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक मैसेज आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, और वो कहते हैं कि उनके यहाँ पर बहुत पहले उनकी सिटी बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई की गई और कई सारे चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी है वो बहुत कम हो चुकी है। वो कहते हैं कि कई बार गवर्नमेंट को भी कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रकृति को बचाना भी ज़रूरी है, तो दोनों काम, डेवलपमेंट और प्रकृति को बचाना, दोनों काम एक साथ कैसे किए जा सकते हैं और कैसे करने चाहिए?
0: देखिए, कंपेरेबल तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। आप जरा गौर करें कि मुझे जहां तक याद आता है कि WHO कहता है कि आपके घर के 300 के मीटर पर कम से कम एक पार्क होना चाहिए, तो इसी गाइडलाइंस को अगर गौर से देखें, हमारे पास जो पार्क होते हैं वो सिलेक्शन वन

0: पार्क न बने, घास लगा दिया और वो पार्क बन गए, बल्कि उस पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ होने चाहिए, जैसे टॉप कैनोपी के पेड़, मिडिल स्टोरी के पेड़, अंडर स्टोरी, फिर ग्राउंड वेजिटेशन। अगर ये 3-4 स्टोरीज के फॉरेस्ट हम अपने कॉमन गार्डन में भी बनाते हैं तो जो ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं डेवलपमेंट से, उसको मिटिगेट करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास सड़क के किनारे अगर गौर करें, वो स्थानीय पौधे के वृक्ष कैसे हों, सड़क के बीच में जो बनता है जिस पर पौधे लगाते हैं, उस पर शर्बी और हर्बेशियस लेयर कैसे हो जो धूल कण को उस पर समाहित रखे। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे डिमांड, मतलब पब्लिक डिमांड, उस डायरेक्शन में कम होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो आपने सवाल किया, ज़रूरत है उस डिमांड की कि हमें ग्रीन एरिया चाहिए, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे यहाँ तालाब ज़्यादा चाहिए, वाटर बॉडी ज़्यादा चाहिए, जो सिलेक्शन वन ग्रास लगा के दिखाने वाला पार्क है सुंदर, उसमें ट्री चाहिए, स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को लगाना है जो हमें कूलिंग करेगा, जो हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, जो डस्ट को कम करेगा।
1: बिल्कुल। मोहम्मद इम्तियाज का कीर्तिनगर दिल्ली से मैसेज आया है, वो कहते हैं कि उनके एरिया में कीर्तिनगर में 10 पार्क हैं जो बहुत अच्छे खासे बड़े हैं, मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि लेकिन सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उसमें घास फूस ही उगा रहता है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि कैसे हम सब लोग उन पार्क्स में किस तरीके के पौधे लगाएं कि जिससे कि वो पर्यावरण को बचाने में सहायक हों और पर्यावरण को सपोर्ट करें स्थानीय लोग।
0: अगर बड़े पार्क हैं तो याद कर लें कि आपके 4 कोने हैं, 2 मिडिल एरिया है, तो आप गौर करें कि एक कॉर्नर के बड़े एरिया को आपको वुडलैंड में तब्दील करना चाहिए। वुडलैंड कौन होगा? जो स्थानीय प्रजाति का होगा, जैसे मित्र गायना, जैसे जंगली कदम का पौधा है, बूटिया मोनोस्पर्मा को कहते हैं पलाश का पौधा है, इस तरह के पौधे को, हरर बहेड़ा का पौधा है, आंवला का पौधा है, वाइटेक्स नगेंडू के निरगुंडी का पौधा है, इन सारे जो स्थानीय प्रजाति के पौधे हैं, जो दिल्ली के स्थानीय पौधे हैं, उसको गूलर है, इन सबको लाना है। पीपल बरगद अधिक नहीं लगाना, क्योंकि पीपल बरगद माइथोलॉजी में भी राजा वृक्ष हैं और ऐसे भी की स्टोन स्पीसीज हैं, उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो लगाएं तो सिर्फ पूरे एक पार्क में एक ही लगाएं, क्योंकि वो बड़ा महान ट्री है, वो राजा ट्री है, तो वो सारे पार्क को देखेगा। तो स्थानीय पौधे के अगर पौधों को, पेड़ों को और पौधों को हर कॉर्नर पर स्थापित करेंगे, वुडलैंड में तब्दील करेंगे, तो पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार होगा।
1: जी बिल्कुल। निहारिका का मैसेज आया है साउथ दिल्ली से, वो कहती हैं कि दिल्ली में कई सारी कॉलोनीज हैं जिनमें छोटी छोटी गलियां होती हैं, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, गलियां छोटी हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सबके घरों में एसी लगे हुए हैं जिनसे हीट उत्सर्जित होती है और इस वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या किया जाए कि गर्मी को कम किया जाए और पर्यावरण को संरक्षित भी किया जाए?
0: ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है कि अगर गौर करें तो यही तो एक रीज़न, एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो अर्बन हीट आइलैंड जो बनता है उसमें ये तंग गलियां भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो उन गलियों में पक्की सड़कें हैं, नली गलियां भी पक्की हैं, तो कोशिश करनी होगी कि इसमें पॉटेड प्लांट ऐसे लगाए जाएँ जो उस टेम्परेचर को भी झेल लें और एटलीस्ट पार्टिकुलेट मैटर को रेगुलेट करें, कुछ वाटर वेपर वहाँ पे बना सकें, क्योंकि जितनी भी ये गलियाँ हैं वो पक्की होती हैं और उसमें मॉइस्चरिज्म ज़ीरो होता है। जब तक ऐसा नहीं होगा मॉइस्चरिज्म, तो वहाँ पे तापक्रम को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए पॉटेड प्लांट मे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है रिधि का, वो कहती है कि कार्बन फुटप्रिंट, ये जो शब्द है इसका कई बार इस्तेमाल होता है, जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको आसान शब्दों में वो समझना चाहती हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है।
0: अगर आप दिल से देखें, आपने अगर पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, पौधों के जीने के लिए, खाना बनाने के लिए मुख्य क्रिया है, जिसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके और जल और लवण की मदद से ये भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे, और इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जो कार्बन फिक्स हो जाता है परमानेंटली, इनके लीफ धरती पे गिरते हैं और वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है। इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट जो एटमॉस्फेयर में खुले घूम रहा था, तापक्रम बढ़ा रहा था, वो पौधों के अंदर समाहित होके परमानेंट जमा हो गया। इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट।

0: मतलब कुछ बढ़ रहा है, ये मुझे पूछना था। और इससे अगर बढ़ रहा है तो हम लोग कैसे इसे सुधार सकते हैं फिर से पहले जैसा?
1: जी बिल्कुल, त्रिपुरा से मैसेज आया है, कॉल आया है अविनाश का। वो कहते हैं कि त्रिपुरा में पहले बिल्कुल मौसम अच्छा था, लेकिन अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और एक कारण उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि वहाँ के लोग रबड़ का पेड़ लगा रहे हैं, क्या इससे भी गर्मी बढ़ने का कोई रीजन रहता है? और किस तरीके से जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाए, ऐसे क्या क्या उपाय किए जाए वहाँ पे?
2: देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, किसी भी अर्बन रिन्यूअल के लिए इकोलॉजी उसका बैकबोन है। और आप अगर सुन रहे हो तो ये जान लें कि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष, स्थानीय प्रजाति की झाड़ियाँ, स्थानीय प्रजाति के ग्रास ही जीवनदायिनी हैं। और अगर जिस पौधे का आप नाम ले रहे हैं वो स्थानीय नहीं है तो निश्चित रूप से लाभ की जगह वो नुकसान पहुंचाएगा। तो प्राथमिकता स्थानीय प्रजाति के पौधों को देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी टॉप कैनोपी, मिडिल स्टोरी, अंडर स्टोरी और ग्राउंड वेजिटेशन की तरह लगाना है, अलग अलग लेयर में, जिससे कि तापक्रम को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये वृक्ष ही वाटर वेपर निकालते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं।
1: जी बिल्कुल, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर,
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स, ग्रीन फ्यूचर की, और हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आपके सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक मैसेज आया है रेखा का, वो कहती है इकोसिस्टम, जब हम कहते हैं तो इकोसिस्टम से मतलब क्या रहता है?
2: देखिए, इकोसिस्टम सुनते ही लगता है कि पता नहीं कौन सा शब्द है, लेकिन अगर इकोसिस्टम को गौर से देखें, कोई भी एरिया, छोटा से छोटा 10 स्क्वायर मीटर का और 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर 4 कंपोनेंट होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी और जीव। और ये चारों वहाँ लड़ते रहते हैं आपस में, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एमंग, मतलब बिटवीन एंड एमंग इंटरेक्ट करते हैं। और ये लड़ाई इकोसिस्टम प्रोसेस को जन्म देता है और ये प्रोसेस से इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट जो आपस में लड़ते हैं वो एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये जान लें कि ये 4 जो कंपोनेंट हैं, इसमें एक भी कंपोनेंट कम हुआ, जैसा मैंने बताया हवा, पानी, मिट्टी और जीव, इसमें कोई भी इनके संतुलन में कमी आई तो इकोसिस्टम भी असंतुलित हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, उमेश दास हैं झारखंड से, लिखते हैं धनबाद से, वो कहते हैं पहले हमारे धनबाद में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह क्या होगी और कैसे हम इस टेम्परेचर को जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल में कर सकते हैं?
2: धनबाद में टेम्परेचर होने के बहुत सारे रीज़न हैं,
1: कोयला
2: और जो वो बात कर रहे हैं उनको ही पता है। वहाँ ज़रूरत है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की, मतलब जो इकोसिस्टम हमने ख़त्म कर दिया उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। और स्थानीय प्रजाति के पौधे, जैसे वहाँ साल का फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, तो हमें उस रेफरेंस इकोसिस्टम की मदद से वहाँ के इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। और जो आपसे सवाल कर रहे थे, उनको चाहिए किन संदर्भ में स्थानीय निकायों को चिट्ठी लिखें, उनसे बात करें और कहें कि जितने भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको इस आधार पर रिस्टोर करें जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधों का समावेश हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में तापक्रम निश्चित रूप से कम होगा।
1: जी बिल्कुल, दिल्ली से पैंथर तोमर लिखते हैं कि घरों में किस तरीके से क्या क्या चेंजेस किए जाए जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके।
2: ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, बड़े शहरों में रहने की जगह की किल्लत होती है और एरेशन कम हो पाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हवा का आवाजाही कितना बेहतर हो घर में, तो आसानी बहुत हो जाएगी। इंडोर कुछ प्लांट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सब लोग जानते हैं, उपलब्ध हैं, इंडोर प्लांट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को उस पर रख सके, कम कर सके।
1: हाँ जी, जी बिल्कुल। राजस्थान से ऋतु का मैसेज आया है, रिभु का मैसेज आया है, वो कहते हैं कि आजकल देखने में आ रहा है कि जहाँ पहले बारिश कम होती थी वहाँ ज्यादा हो रही है, जहाँ ज्यादा होती थी

0: हाँ कम हो रही है, कहीं ना कहीं बारिश का जो तालमेल है वो गड़बड़ा रहा है, तो ये भी पर्यावरण की वजह से ही है, और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
1: ये देखिए, जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न आ रहा है जिसमें बारिश भी है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। ये ग्लोबल फेनोमेना है, लेकिन लोकली उस पर मेहनत करके इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। रोक तो इसमें ज़रूरत है, जहाँ से ये बोल रही हैं वहाँ के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की, जो हमने विघटित कर दिया, क्षरित कर दिया, डिग्रेड कर दिया, उसको वापस लाने की ज़रूरत है, तब शायद इस वेदर पैटर्न को कुछ बेहतर कर
0: कंट्रोल
1: पाएंगे।
0: किया जा सकेगा। जी सर, अब वक्त तो बिल्कुल कम है, आप चलते चलते लिसनर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो सबको जानने चाहिए।
1: मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो शहर का बड़ा पेड़ जो होता है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट असेट होता है। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इस असेट को बचा के रखें, किसी भी विकास की आंधी उस पुराने बड़े वृक्षों तक ना पहुँचे, उसको बचा के रखें। एक तो ये, दूसरा जो भी हम ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करें, वो हमारा और आपका विचार ना हो, बल्कि उस प्रकृति का विचार हो जो कि वहाँ के इकोलॉजिकल हिस्ट्री को जान के हो, और वो इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन पे आधारित हो, तभी
0: जी
1: शायद हमारा जीवन कुशादा रहेगा, अच्छे से चल पाएगा, और हवा पानी हमें मिलती रहेगी।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा, अगला प्रोग्राम आशियाना, आपके साथ रहेंगे स्वाति गुप्ता।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। बहुत ही खूबसूरत गाना दहक का भी आपने सुना, साधना सरगम की आवाज़ की बात ही कुछ और है एंड ऑब्वियसली लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत है। अगला प्रोग्राम मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, प्रोग्राम का नाम हम कदम, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। बुधवार की दोपहर जो हम करते हैं नाम आपके जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के। वैसे शादी का रिश्ता ना बिल्कुल हमारी एक फेवरेट कॉफी की तरह होता है। शुरुआत में वो बड़ी बढ़िया सी एक खुशबू होती है, वो स्टीम उठती है, वो झाग होता है उसमें, वो तो कमाल होता ही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, उस कॉफी का फ्लेवर जो है ना वो गहराता चला जाता है और उसका जो स्वाद है ना वो और उभरता जाता है जी। यही गहरा और मजबूत स्वाद जो है ना, आप जानते हैं कि उसको सबसे ज्यादा जो है बेहतर बनाने में किस चीज का हाथ होता है, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। जी हाँ, यानी कि भरोसा करना, एक दूसरे पर निर्भर हो सके आप, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये आंखें बंद करके विश्वास करने जैसा होता है। आजकल की भागदौड़ वाली अर्बन लाइफ में जहां राइट स्वाइप अप और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना हो चुका है ना, वहां पर किसी भी ऐसे इंसान का होना जो हर सिचुएशन में आपके साथ हो, हर जरूरत में आपके साथ खड़ा रहे, और आपके वो कहते ना कि 3 AM 4 AM फ्रेंड्स की जो हम बात करते हैं, वही सेम फैक्टर, वही सेम बात जब आपको अपने लाइफ पार्टनर में मिलती है तो उसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर ये रिश्ता जो है वो खड़ा होता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो हम कदम, मेरे यानी कि स्वाति के साथ, और मैं लेकर आई हूँ अपने साथ बहुत ही खूबसूरत से गाने जिन्हें मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। आज का मूड थोड़ा सा मेलोडाउन रखेंगे क्योंकि बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन बातों के साथ साथ गानों का मजा आप लेते रहिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और आज इस प्रोग्राम हम कदम में हम बात कर रहे हैं उस गेम चेंजर क्वालिटी की जो आपके रिश्ते में जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर होती है, और किसी भी रिश्ते के बनने में बिगड़ने में उसका कहना चाहिए कि सबसे बड़ा हाथ होता है। रिलायबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, जी हाँ, भरोसे की बात कर रहे हैं। भरोसा, ट्रस्ट, फेथ, उसमें उन सब चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं ना तो बनती है रिलायबिलिटी। जी हाँ, एक दूसरे पर निर्भर हो सकें। अगर आपने कहा है कि आप इतने बजे ये सामान लेकर घर पहुंच जाएंगे तो उतने बजे आप सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म रखते हैं कि किसी भी वजह से अगर देर हो रही है या कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, और आप बिल्कुल सच बोलते हैं उस बारे में। रिलायबिलिटी यही होती है, एक दूसरे के लिए हर सिचुएशन में साथ खड़ा रहना। वैसे देखा जाए तो आजकल की ज़िंदगी में ना ऐसा करना या ऐसा मिलना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये वो क्वालिटी है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है उसे क्रिएट करती है। जब हम रिलायबिलिटी सुनते हैं ना तो अक्सर ना दिमाग में बिल्कुल कहना चाहिए कि एक वो बात आती है ना, एक पुरानी जीन्स वाली बात आती है या पुरानी कार वाली बात आती है कि वो कभी भी आपको उस समय धोखा नहीं देते हैं जिस समय आपको ज़रूरत होती है, और वो बिल्कुल आपके हिसाब से ढले हुए होते हैं। यानी कि जब वर्क प्रेशर, डेडलाइंस, ट्रैफिक और सोशल लाइफ का अलग ही स्ट्रेस होना जैसा कि आजकल होता है, वहाँ पे घर में एक ऐसे इंसान का होना जो आपको जज नहीं करता है, जो आपके लिए हर सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करके आपके लिए, आपके साथ देने के लिए जो है ना वो खड़ा रहता है, यही है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम, और जब मैंने रिलायबिलिटी के बारे में सोचा ना कि आज इस बारे में बात करते हैं तो मुझे एक गाना जो है वो बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है जो हमारे आज के इस टॉपिक के लिए है, और वही मैंने चुना है आप सभी के लिए प्ले करने के लिए। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ उस मूवी का टाइटल ट्रैक जो आपको ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ ना।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम हम कदम में मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। जब आप अपने रेडियो को ऑन करते हैं और आप एक जानी पहचानी आवाज सुनते हैं या आप म्यूजिक सुनते हैं और आप पहचानते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, जी हाँ, अगर आप इस समय किसी भी समय जो आप अपने फेवरेट शो को जब आप सुनना चाहते हैं तो उसका टाइम आपको याद होता है और उस समय जब आप अपना रेडियो ऑन करते हैं वही चीज़ आपको सुनने को मिलती है। यही होती है वो रिलायबिलिटी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम हम कदम में। रिलायबिलिटी, एक दूसरे पे निर्भर होना, एक दूसरे पे भरोसा करना। रिलायबिलिटी सिर्फ एक भरोसा नहीं होती, सिर्फ निर्भरता नहीं होती, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन ये खुद ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी ईंटें होती हैं जो मिलकर इस बहुत भारी दीवार को खड़ा करती हैं जिसके सहारे आपका ये जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है ना वो पनपता है। वैसे एक दूसरे से वादे कर देना, एक्सपेक्टेशंस जो हैं किसी की भी बढ़ा देना बड़ा आसान होता है, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जी बिल्कुल, उन्हें पूरा करना। तो पूरा भी करना है लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी यानी कि जितनी बार आपको मौका लगता है उतनी बार आप अपनी बात पर पूरे उतरते हैं, उससे आती है रिलायबिलिटी। और अक्सर इसके लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, रिलायबिलिटी की नींव जो है ना वो रोज़मर्रा की उन्हीं छोटी छोटी आदतों पर टिकी होती है। कहना चाहिए कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें एक जो है पंखा लगा हुआ है जो कि उसकी सारी गर्मी को निकाल देता है बाहर। जी हाँ, मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल वही होती है रिलायबिलिटी जिसमें आप ओवरहीट होने के लिए ना डिपेंड करते हैं कि आपका हार्डवेयर जो है ना अगर वो सही तरह से काम कर रहा है आपके कंप्यूटर का, देन ऑब्वियसली सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी। या फिर कहना चाहिए रिलायबिलिटी उस कूलेंट की तरह है जो कि आपकी गाड़ी के इंजन में होता है और उसी के सहारे ये जो गाड़ी है ना आपकी, जी गृहस्थी की गाड़ी, ये जो है ना ये स्मूथली चलती रहती है और छोटी मोटी चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल अपने में समेट के जो है आप तक उस आँच को पहुंचने नहीं देती जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में जो है कमजोरी आती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, रिलायबिलिटी के ऊपर आज बात कर रहे हैं हम, हमारे इस प्रोग्राम में नाम है इसका हम कदम और मैंने आज चुने हैं कुछ सॉफ्ट गाने आप सभी के लिए। बीच बीच में मूड को ज़रूर चेंज करेंगे लेकिन ओवरऑल जो मूड है ना आज का, बाहर की ये जो गर्मी है ना इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आज वो चीज़ें जो आपके दिल को और आपके कानों को ठंडक पहुंचाए वो मैं आपके लिए प्ले करूं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर अगली आवाज़ शेखर राव जियानी की मैं प्ले करने जा रही हूं आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। और जानेंगे कैसे, जानने के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है, बताना बहुत ज़रूरी होता है। और आप चाहे अपने कम्युनिकेशन को वर्बल रखें या नॉन वर्बल रखें, लेकिन जताना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, अपने कम्युनिकेशन को फिर चाहे वर्बल है या नॉन वर्बल है, उसे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गलत फहमियाँ ना वहीं से उपजती हैं। और अक्सर होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो, उसको हमारी बात जो है बिना कहे समझ जानी चाहिए। ये ना बड़ा खतरनाक गेम होता है। पासा सीधा पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पड़ा तो फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, तो वही कम्युनिकेशन तो की होता ही है, कम्युनिकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप अपने पार्टनर के सपोर्ट सिस्टम बने, उसको स्पेस भी दें, लेकिन जब उसको ज़रूरत हो तो उसके साथ भी रहें। और भाई, आपस की जो एक रिश्ते की गरिमा होती है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो अक्सर बहुत छोटी चीज़ों से जो है वो बन जाती है। गलती होने पे सॉरी बोल देना, और अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट कर लेना, थोड़ा उसको एक्नॉलेज कर लेना। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं मांगते हैं ना भाई। अब ये गाने जो होते हैं ना, हमारे फिल्मी गाने, इसमें जिस तरह से जितनी खूबसूरती से बातों को कहा जाता है, अक्सर जो है गानों का सहारा भी हम अपने मन की बात करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वो लैंग्वेज नहीं है जो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं। आप भले ही इतनी शायराना बातें ना करें, आप भले ही इतनी डेकोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बावजूद अपने आम छोटे छोटे सेंटेंसेस में, थैंक यू में, सॉरी में, चाय अच्छी बनी थी, या आज अच्छे लग रहे हो वगैरह, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अक्सर उस सीमेंट का काम करती हैं जो आपकी इस रिलायबिलिटी की दीवार को जोड़ता है, जो उन सभी चीज़ों को जोड़ता है जिससे मिलकर ये रिश्ता बनता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ लाइफ इन अ मेट्रो से बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके लिए परफेक्ट गाना जो है ना वो है, तो बिल्कुल यही है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

केके की आवाज में अभी आपने सुना क्रुक मूवी से बहुत ही खूबसूरत गाना। जी हाँ, मूवी भले ही क्रुक हो लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है। कितनी खूबसूरती से बातों को बयां कर देते हैं, है ना। प्यार से जुड़े ये इतने सारे गाने जो हमारे हैं हमारी हिंदी फिल्मों के, इनफैक्ट हिंदी फिल्मों के नहीं बल्कि देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर म्यूज़िक जो है ना वो ज़्यादातर जो है सॉन्ग्स जो हैं वो गाने जो जितने भी आप सुनते हैं जितने भी खूबसूरत ख्याल है ना वो प्यार पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत इमोशन है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें भी चैनी भी है, इसमें बहुत ही सब्र भी है और समय के साथ साथ एक गहराई और एक ठहराव भी है। रिलायबिलिटी वो सीमेंट है जो आपके इस रिश्ते को जोड़े रहता है। जी हाँ, दीवार भी है सीमेंट।

एक्सेप्ट करता है, तो वो फीलिंग और वो एक निर्भरता जो होती है ना, वो रिलायबिलिटी, जी उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। प्रोग्राम हम कदम सुन रहे हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। प्रोग्राम ख़त्म होने को है तो मैं बस अपनी बात को यहीं पर समअप करना चाहूँगी और सिर्फ इतना सा कहूँगी कि भाई अक्सर जो है शुरुआत जो है हम बड़ी किसी भी रिश्ते की ना बड़े जोश व खरोश के साथ करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमें ये बात बहुत अच्छी तरह महसूस हो जाती है कि शादी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है जिसे आपने बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है ना उसमें अपनी गति को बना के रखना है। और किसी भी मैराथन जीतने के लिए स्पीड से ज़्यादा स्टैमिना और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है शुरुआती स्टेज में, लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ जब ये रिलायबिलिटी आने लग जाती है ना, तो आपके रिश्ते की जो मजबूती होती है ना वो काफ़ी हद तक तय हो जाती है। भाई अपने पार्टनर के लिए बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही पड़ता है, लेकिन इस टीम के ना केवल आप सदस्य हैं, ना केवल आप एक दूसरे के साथी हैं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर भी हैं, और कोई और नहीं होगा। ये बात को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करके अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी तरफ से भी इस मेहनत में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेनबो आपके साथ जुड़ा रहता है और आपके लिए आपकी पसंद की और आपके काम की सारी इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड ऑब्वियसली म्यूजिक जो है वो समेट कर लाता है। अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ में। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर, जो आपकी सेहत से जुड़े समाधान आपके लिए प्रस्तुत करता है। शाम 4 बजे का समय रहेगा प्रोग्राम अल्फा जेन का, जिसमें कैंपस कॉलिंग में एक बार फिर से आपको ले चलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कि किसी खास कॉलेज में। शाम को 5 से 6 बजे के बीच आप सुनेंगे सैटेलाइट्स ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, जिसमें प्रवीण रहेंगे आपके साथ। और शाम को 6 बजे का समय आपके मैसेजेस का मैसेज मसाला मिक्स। हर घंटे एक नई आवाज़, हर घंटे एक नया अंदाज और हर प्रोग्राम कुछ नया लेकर आता है आप सभी के लिए। यही है हमारी रिलायबिलिटी जो हम आपको देते हैं हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन, लीप ईयर में 366 कर लीजिएगा उसको। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: इतु आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रेगोपेन 103 मेगाहर्ट्ज समय 3 बजे 30 मिनट लगा ट्रैफिक अपडेट अनियसे फॉर कोहिमा टाउन मोंकला प्र पीएचक्यू जंक्शन तक ट्रैफिक इज नॉर्थ बाउंड हेवी असे और साउथ बाउंड लाइट असे नॉर्थ बाउंड मीनिंग टुवर्ड्स नागलैंड सिविल सेक्रेटरीट एंड साउथ बाउंड टुवर्ड्स स्पीयर हिल अल्टरनेट रूट नहिलुई दूसरा रास्ता लोले मुन होइले ओल्ड मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी दे लोले पारिव PHQ junction to Mazur junction the traffic dia northbound is moderate ase or southbound is moderate ase DCP to Raza point the traffic dia northbound is moderate ase or southbound is light ase Raza point to census point tak traffic dia northbound is moderate ase or south

0: ओके ठीक है जी, ठीक है जी, बाल से दो। और
1: मैं
0: पन
1: सुनना चाहता हूँ, तुमसे मिलके रोंग नंबर फिल्म से ही गाना सुनना है आज।
0: ओके
1: जब तक तुम सामने रहोगे इस गाना को बजा दीजिए सर,
0: ठीक है, ठीक है, मैं तलाश
1: तो मैं
0: करके।
1: दोस्तों को याद कर सकता हूँ।
0: हाँ कर लीजिए, कर लीजिए।
1: भगवान सिंह परमार,
0: ओके हाँ
1: रमेश प्रजापति, पुरुषोत्तम कुमार, शिवा लोहार, राकेश और पूरन वर्मा, गोल्डी
0: ओके
1: और प्रेम सिंह चसदिया, केसरी सिंह राजपूत और हमारे दोस्त अविनाश सैली, पूनम और भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, रमेश पात्रो, जगेंद्र रोंगटी और रुकुबेला मेहता
0: ओके
1: और सुबह के जमीर, यतमान यातो और बहुत सारे सुनने वाले दोस्त, प्रेमिका तिवा, सुनीता बसुमतारी, अंजलि डेरा सर और आपको भी डेडिकेट रहेगा,
0: थैंक यू।
1: और आरजी बेरोनिका मैम को, आरजी तमजन सर को भी डेडिकेट रहेगा सर।
0: ठीक है, ठीक है। गाना का बोल कौन से बोला आपने?
1: जब तक तुम सामने रहोगे।
0: ओके ठीक है, मिल गया, मिल गया।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: हाँ
0: ठीक
1: हाँ
0: है।
1: वही गाना सुनना था।
0: ओके ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अमल, अपनी कॉल को रिडिया करने दे।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: और सर
0: ओके
1: तानुश्री को भी डेडिकेट रहेगा, वो महाराष्ट्र से है, तानुश्री बहन के लिए भी ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है, ठीक है, तनुश्री जी ना। ओके
1: हाँ हाँ
0: ओके,
1: हाँ
0: थैंक यू, थैंक यू। वेल लिसनर्स, फर्स्ट कॉल आई जैसे, फर्स्ट कॉल अमल बसुमतारी ताए कॉल करीना पता से, तो इतु गाना से तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म पर जब तक तुम सामने रहोगी, और इतु गीत सुनबो इतना कुमार शानू और अनुराधा पटवाल लगा वास्ते।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है
0: ओके।
1: और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम कंसमेल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके। हाँ
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा हर दिल जो प्यार करेगा। जी
0: हर दिल जो प्यार करेगा ना। हाँ हर दिल जो प्यार करेगा। कौन से गाना सुनना है पुरन जी?
1: इसमें गाने के बोले गरम चाय की प्याली हो।
0: एक गरम चाय की प्याली।
1: यस यस
0: ओके ठीक है।
1: है गाना।
0: हाँ गाना है अनु मलिक और खौरस का आवाज में।
1: जी, अभी जी थी सर।
0: हाँ अभिजीत नहीं है इधर में, खौरस सिर्फ ऐसा लिखा है अनु मलिक और खौरस।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है ठीक है।
1: तो ये गाना मैं, क्योंकि आकाशवाणी कोई माँ है ना, जो गूगल पे हम बोलते हैं ना आकाशवाणी लाइव रेडियो कोई माँ,
0: ओके।
1: तो वो भी गूगल पे सर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक दोस्त था रमेश प्रजापति भैया जी,
0: ओके।
1: उनके साथ एक दोस्त था, तो उनकी लाइट नहीं थी, तो मैंने ये उनको फोन करके बोला कि ऐसा बोलो आकाशवाणी लाइव रेडियो आकाशवाणी कोई माँ, तो उसके मोबाइल पे चल पड़ा सर आपका कार्यक्रम।
0: ओके ओके। हाँ AIR आकाशवाणी ये निकालेगा, वो आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से ना।
1: हाँ जी, डाउनलोड भी करना होता है, डाउनलोड में तो बहुत सारे चैनल आते हैं, पर अगर आप गूगल से आप अगर एक चैनल आपको कोई माँ सुनना है तो वो बोलेंगे ना आकाशवाणी लाइव रेडियो आकाशवाणी कोई माँ,
0: ओके
1: तो
0: ओके।
1: लाइव आ रहा है सर।

0: तो बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूज एआईआर एप के माध्यम से तो आता है।
1: हाँ, एयर ऐसा लिखने से सब आ जाएगा उधर में ना,
0: ऐसे भी आ जाएगा। अगर जो लिख नहीं सकता अगर वो गूगल से बोल के चला सकता
1: है, वो गूगल से भी बोल के चला सकता है। हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी
1: जी हाँ।
0: तो सबसे पहले तो मैं ये गाना आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, थैंक यू।
0: और मेरा दोस्त है राकेश से, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, और अंजलि जी है, अमल है, बिमल है, और कोई माँ के कॉलर जितने भी लाइव आपका कार्यक्रम न्यूज एआईआर एप डीटीएस और कोई माँ के श्रोता रेडियो पे सुन रहे हैं, उन श्रोता के लिए सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
0: थैंक यू सर। और भैया जी वो सुन रहे हैं न्यूज एआईआर एप लाइव कार्यक्रम, उनको भी सुनाना चाहता हूँ, रमेश प्रजापति भैया के साथ है।
1: ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू थैंक यू। वेल लिसनर्स कान इतना दूसरा गीत शुनब अपने अनुमालिक और खरस लगा वास्ते से फिल्म से हर दिल जो प्यार करेगा।

0: Hello.
1: हेलो। अरे जगह
0: हाय, रोको भी लेना।
1: यस
0: ओके,
1: आवाज तो
0: क्यों?
1: फाट दे ले रहा
0: हाय तो किन्हीं का से?
1: बाल से अरे दिन
0: ओके
1: दे मंग गरम है हो
0: हाय तो ताते फिनी दिने का हाय तो कोई ताते पनी ने गिरे ना
1: अम्यांबे
0: ताते
1: आएगी ना गरम अम्यांबे आएगी ना गरम पहले बाल होने की
0: ये तो भी गर्म तो आजे शुरू हुई है। ह्यूमिडिटी तो बिशे आजे अजीब ही मन गर्म हुई ना आजे ये तो भी। सो ताते पानी गिरी आजे?
1: वो पानी पुराने हो
0: ओ पूजा नहीं ना।
1: मान दो इस पाले तो पानी पड़ जाए बोले तो ये सबसे ठंडा होने की
0: होय तो होय तो होय तो होय तो
1: पानी ना पड़ा तब तो अलग जगह निशना ठंडा तो ना पाओ
0: होय तो होय तो
1: इतना पानी पड़ो इतनी रुचि ताकि ठंडा हो लेना।
0: अच्छा, ठीक है से ठीक है से।
1: और शोर लगा फिल्म
0: श्योर ना?
1: या
0: श्योर ला मूवी बारा कुन तू गाना होने वाला है?
1: एक ही पार ना कि एक पार
0: एक
1: ना
0: प्यार नक
1: और
0: माँ है।
1: ये
0: ओके
1: इतने लगा
0: ओके ठीक है से तो होने दी वो।
1: तो गाना बोला था ना
0: वाह ठीक है से
1: तो
0: ओके।
1: मैं FM ट्रैवल बंद है आरो इतने फर्स्ट टाइम थी बोला था ना
0: अच्छा
1: इतने भी मैं तो गाना ना दिया ना
0: ओके ओके ठीक है से तो ठीक है से तो कितने दिन का गाना हमें
1: आरो
0: न्यू ने ले।
1: डेडिकेशन दो अम्मा बसमतारी
0: ओके
1: सुनीता बसुमतारी अंजलि बसुमतारी विमल बसुमतारी
0: हाँ
1: जुबा के जमियर अकुसो चौबीस ब्रदर
0: ओके
1: एमएस पाट्रॉन जितेंद्र रोंगस्पी रोंगफर और अपने के और
0: ओके थैंक यू।
1: मंदिरा और बाइकन मुंडा और कौन कौन पार्टिसिपेट करे तो हम करके
0: ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोकोविड अपनी कॉल को दिया करने दे।
1: आया मान महीना महीना रे एक बार हिंदी लगाते तो पावले बेसी दिग्दार से लाइन
0: होय तो मानु बिस्सी
1: वैसे
0: इंग्लिश थाकी जाए
1: म्यूजिक
0: ना।
1: लाए तो पावले बेसी आराम से तो
0: होय होय होय की को
1: लाइन
0: मानु सब इंग्लिश थाकी जाए तो ना इनका ना। मैं भी
1: और
0: गाना जा दें तो मैं इंग्लिश ही रखी दे गाना को तुम होते हैं मैं इनका लाइन तो आरो खुली दे ना इनका दे।
1: वैसे म्यूजिक के माने मन फेमिलर ना हो थका वाला लाइन तो इजी पाई जाए तो
0: होय तो इनका होय थाकी गो पारे।
1: हिंदी लगा तो आगे पीछे पूरा बुकिंग करी ना रखी थी ना उसे लाइन ना पाए वो
0: होय तो आ हुने वाले बाहर बाहर भी बिचे ऐसे नहीं थे तो। अरे लाइफ फोन ही ना से तगान भी एकदम लिखी बोले ना पारे आमन भी ऐसे तो कुंबा देना इधर वाने वॉइस पर कुआ खान इन्हें का कथा को पारे खान तगान इन्हें का पारे भी लिखी ना आई मीन लिखी बोले ना पारे इधर वाने तगान फोन इन प्रोग्राम से बिशी बात पार्टिसिपेट को उठाएगा इधर वाने।
1: ओके
0: एनीवे थैंक यू आपने कॉल कर दिया करने दे।
1: थैंक यू।
0: ओके थैंक यू। वाल लिसनर्स का इतना होने वो अपनों लोग के मुकेश लता मंगेशकर और खौरस लगा वास्ते फिल्म से शोर।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी, हाँ बताइए। हाँ
1: जी, तो मुझे गाना सुनना है
0: कौन से
1: और
0: फिल्म का?
1: फिल्म का नाम है तुम सा देखा नहीं। मिलेगा? देखा नहीं। जी
0: तुम सा देखा नहीं,
1: जी
0: तुम सा नहीं देखा।
1: हाँ, तुमसे नहीं देखा।
0: हाँ, कौन सा
1: उसमें
0: गाना?
1: एक गाना है, वो हमसे खफा है।
0: तुम सा नहीं देखा मैं, ये गाना तो नहीं है।
1: वो उदित नारायण का है, वो हमसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है। तो
0: फिल्म का नाम एक बार बता दीजिए फिर। तुम सा
1: तुमसे नहीं देखा और गाने के बोले वो हमसे खफा है।
0: वो उदित का तो नहीं है, उदित का फिल्म वाला तो नहीं है ये हम लोग का
1: अच्छा,
0: पास।
1: इसमें कौन कौन से गाने?
0: इसमें देखो कसम से आसा भोंसले, मोहम्मद रफी का,
1: अच्छा,
0: और आए,
1: ये तो पुराने वाले। चलो
0: ये तो
1: छोड़ो, मैं तो
0: पुराने, ये तो
1: अच्छा अच्छा
0: पुराने
1: ये तो पुराने, तो मैं
0: पुराने
1: आपको
0: 1990 का है ये।
1: अच्छा, चलो मैं आपको दूसरा गाना गाना बोलता हूँ और मदहोशी का सुना दो। हाँ,
0: मधोशी मधोशी मधोश या मधोशी बोला?
1: मदहोशी मदहोशी,
0: मधोशी का कौन से गाना सुनना है आपको?
1: उसमें गाना कहीं हो ना जाए मोहब्बत किसी से।
0: ये गाना तो नहीं है मधोशी में।
1: अच्छा, इसमें कौन से गाने?
0: आए आए खुदा चले
1: अच्छा
0: चले भी आओ,
1: जी,
0: और टाइटल सॉन्ग है मधोशी मधोशी, ओ जाने जाना प्यार
1: अच्छा ये
0: का।
1: सुना दो। ओ जाने जाना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज
0: हाँ,
1: में।
0: साधना सरगम का।
1: हाँ,
0: ठीक है
1: ये सुना
0: ठीक,
1: दो। तो
0: ओके
1: मैं कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके करिए।
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा। तो
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भगवान सिंह परमार, पूरन परमार, रमेश प्रजापति और अमल बसमाचार्य चार्य हैं, अंजलि हैं और बिमल हैं और राम नरेश कंजर हैं, रमेश प्रजापति हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: और सभी के साथ में ये गाना सुनना चाहूंगा और पूरन परमार जयपुर से।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: ओके ओके, धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद। वाल लिसनर्स कन अपनी कन के मो एकता रिक्वेस्ट करिए से मांग करिए से अपनी कन जोटी फोन करिए से गुले अपनी कन आगे बढ़ है गाना तो जानेंगे ना रख के लो भी, और फिल्म लगा नाम भी ठीक ठाक कोई दी भी किलो माने इनका बोले टाइम तो ना खाओ, टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसलिए जो भी सुनता है अभी प्रोग्राम, अगर आप लोग फोन करना है तो मेहरबानी करके पहले से आप लोग ढूंढ के रख लीजिए और गूगल करके कौन से गाना सुनना है और हम हमको बता दीजिए, हम उसी हिसाब में बजेगा क्योंकि समय बर्बाद नहीं करने के लिए। ओके थैंक यू सो मच। तो ये गाना सुन लेंगे अभी उदित नारायण और सदना सरगम की आवाज़ में, फिल्म है मधोशी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं। जी,
0: ओके, मोहम्मद अरुण।
1: ग्राम
0: ओके, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अकबरपुर है, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। जी
0: मध्य प्रदेश से।
1: जी
0: ओके, आप तो फर्स्ट कॉलर है ना क्या? मेरे लिए तो आज ही पहला बार।
1: नहीं, पहली बार बात हो रही है आपसे।
0: हाँ, मेरे पास आज ही पहली बार बात हो रहा है। मोहम्मद क्या बोला था आपने?
1: मोहम्मद हारून।
0: मोहम्मद हारून।
1: जी,
0: ओके ओके, मध्य प्रदेश से ना?
1: हाँ जी, मध्य प्रदेश से।
0: ओके
1: आपसे पहली बार तो बात हो रही है कोहिमा में।
0: ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
1: जी,
0: अच्छा, आज कौन से गाना सुनना है आपको मोहम्मद जी? विजय?
1: हाँ, फिल्म है दिव्या शक्ति। दिव्या शक्ति संग चलूंगा मैं, अजय देवगन वाली फिल्म है ना,
0: फिल्म का नाम क्या बताया था?
1: दिव्य शक्ति।
0: दिव्या,
1: जी,
0: दिव्या ना,
1: ठीक
0: दिव्या शक्ति।
1: ठीक है। जी, अजय देवगन वाली है ना, करिश्मा कपूर है ना।
0: हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये दिव्या शक्ति तो हम लोग का पास, हम लोग का ये लाइब्रेरी में नहीं है हम लोग का। आप
1: अच्छा, मैं उसकी फिल्म बता दूं। हाँ,
0: दूसरा फिल्म बता दीजिए।
1: मुस्कान का सुना देना।
0: मुस्कान ना?
1: जी,
0: हाँ, मुस्कान। कौन से गाना सुनना है आपको? ओके,
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: जाने मन चुपके, उदित और अलका का आवाज में ना?
1: जी,
0: ठीक है मोहम्मद जी, ये गाना तो बहुत लंबा है, हमको काटना पड़ेगा थोड़ा सुना के। ओके ठीक
1: ठीक
0: है ठीक है।
1: है। ठीक,
0: अच्छा, आप कौन किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
1: जी है प्रस्तुम कुमार हैं, भगवान सिंह शर्मा, सिंह रोहित वर्मा हैं, मान
0: ओके
1: लाल हैं, मनोज
0: हाँ
1: तिवारी हैं,
0: ओके ठीक
1: और विजय पांडे, शारदा प्रसाद हैं, जो
0: है।
1: सब सुन रहे हैं कोई मामा है, सबकी भी इज्जत देते रहेगा।
0: ओके ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: जी, धन्यवाद आपका।
0: ओके, वाल लिसनर्स का नीटे होने वो अपना के उदित नारायण और अलका याग्निक लगा वास्ते फिल्म से मुस्कान।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और गाने के बोले मेरा सनम सबसे प्यारा है।
0: और फिल्म का नाम क्या बताया था?
1: दिल का क्या कसूर।
0: दिल का क्या कसूर
1: जी
0: का। ये फिल्म तो नहीं है हमारा, हम लोग
1: बलमा फिल्म मिल जाएगी।
0: बलमा
1: हाँ, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो।
0: बलमा भी नहीं है हम लोग के पास।
1: बंदिश मिल जाएगी? मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, बंदिश।
0: बंदिश हाँ, बंदिश है।
1: मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, ये गाने के बोल हैं।
0: हाँ, बंदिश में ये गाना तो मैं कौन हूँ ये है। और अरे अरे भागो अरे भागो दौड़ो, ये गाना है। और रंग रंग भरे मौसम से
1: जी, और
0: संया जी ने घर बनवाया
1: जी।
0: इतने है हम लोग के पास ये गाना।
1: रंग भरे मौसम से रंग चुरा के ये सुना दीजिए सर, पुरानी वाली है वो।
0: हाँ, पुराना पुराना
1: किशोर कुमार जी की आवाज में है ये।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: जी जी।
0: आप कौन बोल रहे हैं?
1: सुना दीजिए। मैं भगवान सिंह परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके ठीक है भगवान सिंह जी।
1: जी सर,
0: थैंक यू सर। और
1: कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे सर?
0: हाँ, याद कर लीजिए।
1: मोहम्मद हारून जी हैं, अंजलि भस्मचारी जी हैं, रमेश पत्रे जी हैं, अमल भस्मचारी, बिमल भस्मचारी, रमेश प्रजापति, पूरन वर्मा, राकेश जी शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकोन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, आपको डेलिकेट रहेगा।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: धन्यवाद सर जी,
0: ठीक है। वेल लिसनर्स, कहानी टेनी वो अपना लोग के किशोर कुमार और आशा भोसले लगा वास्ते फिल्म से बंदिश।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते
0: हाँ नमस्ते।
1: जी। फिल्म का नाम है सजन चले ससुराल।
0: सज्जन चले ससुराल।
1: हाँ, गाने के बोले तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
0: सज्जन चले
1: साजन ही ससुराल जाएंगे।
0: सज्जन चले ससुराल में तो एक ही गाना है, डूब के दरिया में, वही है गाना।
1: एक ही गाना है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: तो फिर हीरो नंबर वन का सुनवा दीजिएगा।
0: ओके।
1: तू मेरा हीरो है जी।
0: तू मेरा हीरो है, हीरो नंबर
1: हाँ
0: वन
1: जी,
0: ना।
1: हाँ जी। और मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: ओके प्रेम सिंह जी, बताइए कौन से गाना सुनना है ये इस फिल्म से।
1: इसका वो है ना, तू मेरा हीरो है।
0: तू मेरा हीरो है,
1: हाँ जी,
0: तू मेरा हीरो है
1: बड़ी मुश्किल से
0: तो
1: कॉल लगा सर आज मेरा।
0: हाँ के ठीक है ठीक है। लेकिन ये
1: ये
0: गाना
1: काफी
0: तू मेरा
1: श्रोता
0: हीरो है तो नहीं है, तो ये हीरो
1: जी,
0: नंबर वन में तो तू मेरा हीरो है ऐसा गाना तो नहीं है ना क्या मेरा ख्याल।
1: तो फिर कौन कौन से गाने हैं इसमें?
0: सोना कितना सोना है,
1: हाँ
0: सातों जन्म तुझे तुझको
1: हाँ
0: पाते, तुम हम पे, तुम हम पे मरते हो।
1: तुझको पाके सातों जन्मों वाला।
0: ओ तुझको
1: हाँ जी,
0: पा के सातों जन्म ना।
1: हाँ
0: ओके ओके ठीक है बजा
1: जी,
0: देगा। सातों जन्म तुझको पाके
1: हाँ
0: पाते
1: जी। सातों जन्म तुझको पाते, वही
0: ठीक है
1: तेरे
0: ठीक है।
1: नैनों में हम बस जाते हैं।
0: ओके ओके ठीक है, बजा देगा बजा
1: और
0: देगा।
1: कैसा मौसम है सर आपके वहाँ?
0: यहाँ आज मौसम थोड़ा गर्मी जैसा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आज, तो
1: अच्छा
0: गर्म हो रहा था लेकिन
1: हाँ,
0: बारिश भी हुआ। 20 मिनट में बारिश होता है और ऐसा बारिश होकर फिर गर्म, बारिश छोड़ देता है फिर बारिश गर्म शुरू होता है ऐसा है।
1: जैसे सर आपको, आपके वहाँ पे पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है?
0: हम लोग का पहाड़ी इलाका है।
1: पूरा पहाड़ी इलाका है
0: हाँ
1: ना,
0: पूरा पहाड़ी इलाका।
1: मतलब उसके खेती के लायक जमीन नहीं है वहाँ पे।
0: खेती तो करता है क्योंकि खेती भी है, तो खेती है, कोई कोई
1: अच्छा,
0: खेती भी करता है लेकिन ज़्यादा से ये क्या बोलते हैं।

0: पहाड़ी वाला खेती करते हैं, झूम कल्टीवेशन ना।
1: अच्छा,
0: ठीक है,
1: जैसा कि
0: समय भी जा रहा है,
1: मतलब
0: आप जो किसको डेडिकेट करने हैं बता दीजिए, क्योंकि
1: ये
0: टाइम
1: जितने
0: चला।
1: भी है, जितने भी लाइव कॉलिंग हमारा सुन रहे हैं, श्रोता सभी के लिए डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार असम से हैं,
0: ओके
1: विमल जी है, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं ना, बैकौन मुंडा सभी के लिए रहेगा।
0: ओके, थैंक यू ओके। हाँ
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, वेल लिसनर्स का नीति हूँ वो अपने लोग के कुमार शान लगा वास्ते फिल्म से हीरो नंबर वन और एक गीत लोग प्रोग्राम तो शेष करिया हम कि हम 7 बजे 10 मिनट और 20 मिनट लगे अपनी शुनिया हम नागामीज और इंग्रजीते रिजनल खबर और थैंक यू सो माच फॉर ट्यूनिंग और सब मानक मुझे धन्यवाद दिया से आज टाइम पा ना यूर सब लगा कल तो रिसीव कर नपारे कि नेक्स्ट टाइम भी आज ये नेक्स्ट टाइम अपनी कल रिसीव कर बजाय दिया हम सो RJ Jacob, apni hum sab ke thank you and stay safe and wishing you all once again a very good evening. Aro 7 baje 30 minute par ase Western Music Program RJ's Choice. Tar pasot moi ako apni hun ke lock kuria wo 9 baje 30 minute te with more Hindi film songs, that is RJ's Choice. So stay tuned.

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हुआ।

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।